थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जे उपेश पाखिना दिस थौ नेपाल सम्मत चिन्स सौ पी खुदा दिलातो द्वादशी अनसन चुना दी म चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले से वार्ता पाखे सहमति पूर्ण समाधान मालेगु चोले शिक्षा नप खेलकुद मन्त्रालय सचिव चुनामणि पौडेल थौ औपचारिक रूपमा सहल व्याख्या दिगु घोषा दु सचिव पौडेल डाक्टर केसी लिसे तपिङका सम्वादना वेक्ल थनादीको मागबारे सल यानादीको घोषा दु मिग वेक्ल डाक्टर केसिया त अस्थल उना नाप्ना दिगु दु थो स्यान शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबार शनिले डाक्टर केसी लिसे टेलिफोन पाखे प्रारम्भिक सम्वाद यनादीको ख सरकार सम्वाद ओ सहमतीय माध्यममा डाक्टर केसी थङ्गु विषय त फयाफक्क सम्मानजनक लिसे सहमतिपूर्ण समाधान माले त प्रतिबद्ध जुगु धागु ख डाक्टर केसी थिथि न्यागु थलय एनापिना अनसने चुनादीको ख डाक्टर केसिया उसिया सिङ्गुली वास या त सेती प्रादेशिक अस्पतालले तया त गुदु रान्तिक स्थिरता सुशासन समृद्धि व प्रादेशिक विकास गति यात्रा तीव्र यात्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दोथी सुङ्गु बुदा या सहमति जुगुदु निगो पार्टी दोथी प्रदेशसभा सहकारी यागु व मङ्का सरकार निच्नेगु सहमति जुगु ख सहमति कथा मङ्का सरकारे कोशी बागमती व लुम्बिनी प्रदेश या नेतृत्व नेकपा एमाले यागु सहमति जुगुदु अथे कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेशीय नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा याइगु सहमति जुगु ख मधेस व गण्डकी प्रदेश सरकार गठन या सन्दर्भ प्रदेशसभा प्रतिनिधि याइगु मेगु रान्तिक दल सेन परामर्श सेना सरकार नेतृत्व व बोती या स्वरूप कोचीको सहमति जुगु थागुदु सहमति पौष नेकपा एमाले नायक केपी शर्मा ओली व नेकपा या कजी पुष्पकमल दाल प्रतिनिधि दल हाची तयादिगुदु कर्णाली प्रदेश या मुख्यमन्त्री यामलाल कोडेल राजीनामा ब्यादिगुदु प्रदेशसभा मिग चुङ्गु मुज्यात नौना दिसे वेक्ल पद राजीनामा बिगु घोषणा एनादिगु ख नेपाली काङ्ग्रेस व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मुख्यमन्त्री कोडेल विरुद्ध वङ्गु असार 32 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता यागु ख अविश्वास प्रस्ताव सल जिगु ज्यादल कथा थत विश्वास मत वैगु सम्भावना मधुगुली वेक्ल राजीनामा ब्यादिगु ख नेकपा एमाले नेता कोडेल 2080 चैत्र 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त जुयादिगु ख खोप या नीति ग्लोबल अलायन्स गाबि नेपाल नाप सुङ्गु लाख च्यादो निसो व नेछत्का अमेरिकी डलर लित मकागु कोचुगुदु गाबि नेपाल छोगु पौपाके विश्व स्वास्थ्य सभा जुगु निगु पक्ष सल उकिलिपा वगु पौ व नेपाल ह्यबोगु प्रस्ताव लिदसा थो कोचुगु धका स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय धागु ख सभामुख डोल प्रसाद ओर्याल अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 पाखे नेपाया अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्वर्धन विकासले से प्रस्ताव तरुण या त कानुनी आधार बी धाइदिगु दु छिनलता मे शेर्पा गुठी पाखे गोसागो गोपी पेक गो छिनलता मे शेर्पा ललहागु छोले वेक्ल थते धाइदिगु ख वेक्ल विधेयक पाखे थिथि जाति भाषा धर्म संस्कृति व समुदाय मौलिक परम्परा ज्ञान सिप कला व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति संरक्षण अभिलेखकरण व प्रवर्धन जुगु विश्वास पङ्का दिल ज्याजो सभामुख अर्याल वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ मे चोमी डाक्टर नवराज लम्साल सङ्गीत कमी किरण कडेल मे हालामी विमला राई व सारिका घिमिरियात शेर्पा ललना दिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा संसदीय दल रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 पाखे निर्वाचित प्रतिनिधिसभा दुज गणेश पौडेल या त हाकुकु मसी प्रहार याना यागु दुर्भार या त गम्भीर थाना कर्सन जुगु धागुदु दलीय मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकुटी पाखे पित बोगु विज्ञप्ति थोए साउन 7 गते जनताली से नाप्यागु झोले कोचाके लुहा वेगु छोले सांसद पौडेला त जुगु उगु घटना या घोर प्रश्न एना त गु ख विज्ञप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था असहमति हो विरोध व्यक्त लिसे अधिकार दुसातपि जनप्रतिनिधि या त जुगु हिंसा दुर्व्यवहार अपमानजनक व्यवहार छुन लोकतान्त्रिक समाज स्वीकारे जुइ मफुगु नेतना त गु ख
संसदीय दल लोकतान्त्रिक मूल्य विधीय शासन अहिंसात्मक क्रान्तिक अभ्यास नापन सभ्य समाज निर्माण प्रति थ झ्याब्ने प्रतिबद्ध जुगुन तथिका तगुदु थुसिया हरिलाल श्रीलक्ष्मी स्मृति पत्रकारिता शेर्पा कान्तिपुर टेलिभिजन पत्रकार नारायण सुन्दर किलम्बु या त लहलाग्दो नेवा पत्रकार राशिद अबुया न्याकोगो वार्षिक उत्सव विषय चिन्निक गो सारण सभा झोले मिग गोसा गो गो ज्याजुले प्रसा दुज मदन कृष्ण श्रेष्ठ वेकया त उगु शेर्पा ललनादिगु ख खोपया कला संस्कृति ओ सम्पदे संरक्षण लिसे देया शिक्षा खेले बियादिगु योगदान कदरियाना किलुमिया त चिरो दाया उगु शेर्पा ललहागु ख राष्ट्रिय समाचार समिति राष्ट्रसा फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठ थ मा अबुया लुमिती पलिस्ता यनादुगु उगु पुरस्कार थोसियान झ पत्रकार कृष्ण प्रजापति या त ललहागु ख उगु चोले सांसद श्रेष्ठ लोकतन्त्र थगु जात जाति जात्रा धर्म नख भ्या संस्कृति संरक्षण व सम्बन्धन या दैगो संवैधानिक अधिकार ख धैदिल रोल्पा या सुनहरी गाउँपालिका एक सेरम या दवाङ चोका सा चोले झोगु झोले चलखेलाना सिपी निम मिसाना मसिगुदु ने छदया असोजी घरती मगर ओ सुई खुदया अमरा घरती मगर या सिमलुयाओ गोख चलख पेम चोले ओ निम सान सिगुदु कापा जुम खुइदया कुले घरती मगर या त वास याना चुङ्गुदु खोप नगरपालिका नगर दुनिया सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्वर्धन लिसे पर्यटन प्रबन्धन नसक्रियता उफेका हगुदु खोप नगरपालिका विश्व सम्पदा थलखे दुखनाथ सङ्गु ऐतिहासिक ओ सांस्कृतिक सम्पदा जागु खोप देया सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण व पर्यटन प्रबन्धन या त उच्च प्राथमिकतया तिथि योजना हो ज्याजो यहाँका चुङ्गुदु धार्मिक ओ सांस्कृतिक गतिविधि यागु झोले जुइगु अव्यवस्थित पूजा बलि आरती धुँ थुपा इता चाकेगु नाप सिन टिकेगु रङ पागु लगायत मेमेगु गतिविधि सम्पदा संरक्षण जिफुगु क्षति नियन्त्रण नीति न आवश्यक व्यवस्थापन ओ सचेतना ज्या जो न नगरपालिका ढाका वा चुङ्गु धागुदु नगर दुनिया ऐतिहासिक मठ डेग फल्चा सत बहा बही क्ष दबु स्मारक मूर्ति काष्ठकला हस्तकला संरक्षण या हात्या खने दया चुङ्गु नगरपालिका नेथङ्गुदु वैदेशिक लजगा बालागु तलब या लोबे लाका न्युजिल्यान्ड ओ पोर्चुगल छोया बी धासे धेबा ठगी यागु दोबने निमसित चुङ्गुदु यी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बारा चुनीमा ओकलडुङ्गा छिं दुमा निगुदया सुरेश घिमिरे पोर्चुगल छोया बी धासे समिसी के पाखे चिन्च्यागु लाको ए तारकेश्वर नगरपालिका दस चुनीमा रूपन्देही छेन्दुमा ने छद दुमा राजकुमार भण्डारी न्युजिल्यान्ड छोया बीगो धासे निम्सिके याना सुङ्गु लाको या विषु उना चुङ्गु उजुरिया लिदेश प्रहरी जुङ्गु ख चिन वगु एसआरएम कम्पनी देखोगु इभी मिग सनीले भोटेकुसी खुसी कुटुना तना चुङ्गुदु रसुवा साग प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुरुप्रसाद अधिकारी कथ इभी गाडी नाप रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका तिन या निद दुम सबिन तामाङ न तना चुङ्गुदु प्रमुख अधिकारी कथा पञ्चायत जाँचबास याका ए हेगु झोले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका पाँच च्याप्रवेशी या चिल्मे जलविद्युत लिक या पोटेकोसी खुसी कुटु वङ्गु व सेना प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी माला चुङ्गुदु कैलालिया गोदागोरी नगरपालिका चार हाटपुखु लिकडुगु खुसी छम ल्याम लखे दुबिना बेहोस जुम वास यागु झोले सिगुदु जिल्ला प्रहरीकारले कैलाली या कथम हिग हिने मो लुइगु झोले लखे दुबिङ्गु ख सिम जोशीपुर गाउँपालिका दुई छे खसा आ धनगढी उपमहानगरपालिका सात मनहरामे चुना उया चुङ्गु ख थाइल्यान्डे जुगु हुला प्याख कास्या नेपाल डान्स एकाडेमी एनडिए उत्कृष्ट प्रदर्शन या त तालागुदु थाइल्यान्ड या राजधानी ब्याङ्केको जुगु ग्लोबल लिग एक्स जिएल एक्स डान्स च्याम्पियनसिप 2026 नेपाल प्रणित यासे नेपाल डान्स एकाडेमी जुनियर क्रु उत्कृष्ट प्रदर्शन यागु ख हलिया नेगु देशम्पतिकाको च्याम्पियनसिपे एनडिए जुनियर क्रु तिथि विद्या उत्कृष्ट प्रदर्शन यासे पदक न त्याके त तालागु ख रोहिया मर्जन व सृष्टि मर्जन नेतृत्व
वङ्गु पुचले सृष्टि मर्जन स्वस्तिका अर्याल ओ सरोज मोक्तान कोरियोग्राफी यनादिगु ख भारतीय सङ्घीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान मन्त्री प्रसाद पाखी राजीनामा विदुङका भारतीय आन्दोलन याना चुङ्गु ककरो जनता पार्टी सिजिपी शनिबार आन्दोलन लित खागुदु सिजिपी सरकार मेमिगु मागदन समाधान यागु सरकार आश्वासन विदुङका जन्तर मन्तरे सुइन हेनु निसे जुया चुङ्गु आन्दोलन लित खागु ख मिगहे शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी या त राजीनामा लहनादिगु ख दे या युवा भ्रम या चाले त मकिनेमा धैगु सुनिश्चित या त विद्यार्थीगु तथङ्गु हिते थम राजीनामा बिया दिगु प्रधान थाइदिगु दु थौ देङ्क सामान्य लिसे आप्ला वावैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु बागमती गण्डकी ओ कर्णाली पहाडी ओ हिमाली लागे छगुनीको थासे तसक वावैगु दुकुमा यागुदु मिग सोनिगले नि गुगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौन थोय ल्याख तानोइगु दुकुमा यागुदु सोनिगले सुथे न्याता इजुया चिन हेगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलिया नेता इजुया निगु मिनेटे बी नेपाल भाषा बुख कोचाल शुभ है।

जो निनामी भाजुमे जुपि हिउपा ह कुनुगस ज्यासो जोना जिरु वेदुना झस लस कुस दुछित न थौ न छिस चाहिँ सधा या थे पिङ्या गुम नेट तक जिना फसना सल बेक दिफु क्यानि तिम फोन ल्याग 42,11,736 ख धास थो ज्यासो या त छिस 98,103 मेगाहर्ज पाके नेपालिङ सोना नेना दिफु अथ्याना छिस हलिनिङ सोना नेना दिगु खस ओ क्यानि तिम छिस www.radionepal.com प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे अले पिङ्यागु मिनेट तक बाम्बा लागु लोकम हागु मेछित देशा से ठिगु नुगले चङ्गु ख निने कने या से थौयागु थु ज्याजो पुङकेगु तातुना जना जी वै चनागु ख किन्छसन लसको राष्ट्रिय में अपना पछि तलस कुछ यहाँ चुने झासन दासे चिन्हवातेगु राष्ट्रिय में।

0: Yo ni nami fazo mezu vinci sani na he dila. दीपक वज्राचार्य सलेदु गु सुनाम्बी धन ढैगु पटि मे ठो यो लोकौ हागु पप मे नख थो मे नेना छिता यो कोहे लस्तञ्चाल जी दैगु आशा बल सिङ्कया सुना थौको नि खेतल फुक्क हल जोल मनु त्यसन निथ छेलीगु हल जोल फुक्कै आफ्ला ठिकै जुया चङ्गु थु अले थो ठिकै जुगु मु या त सुन थो भाको क्याकु ख सुन समायोजन याइगु ख ओदासा झिस स्वेहे बाँकी दनी अझ उप ठिकै जुइगु खला गेख ठोला झिस मसु तर झिगुली न छौ कर्मयाना थौ लाचुला ने मापी मन त दु थौ तुटी लातुती चुला ने मापिन त दस यु कुए हाथ्या जुया चङ्गु दु धैगु खसिस झिम श्रोता पिसन धैदिगु ख पाखेन ने नाय दिल अले ने नामी भाजु मेजुपि ज्याझयु नाख यु पहगु नु गस अले थौ ज्याच न्याका चनागु जुल जिरु विश्रेष्ठ नापा प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे अगुवाली छ अले थौ ज्याझ छिस 98103 मेगाहर्ज नेपानियङको चुना नेना दिफु धासा छिस हलिनियङको चुना नेना दिगु ख सा www.radionepal.gov.np वो www.radionepalonline पाखे अले रेडियो नेपाल यागु हे फेसबुक पेज पाखे न छिस हलिनियङ कचना छिस निनादी फु धसे आदस फोन सप्ति दिमा पास त लसकु से हजुर हेलो
1: हेलो
0: हजुर ज्याज लसकु से दु गर्न सुन न दिया थे
1: जुजुल बाजी खोप सुरु बिना क रतनलाल छ त न्यू
0: आ हजुर रतनलाल ज्यू महफु छि जना भपिसि दुख हजुर चितना पाँच जुया चङ्गु जुल अले हजुर चितना सदा सदा भि उसा निसे पाँच जुया चुनेमा हजुर अले रतनलालजी छुदै दिथौ हजुर ओला डु नि बोर्डिङ ला डु अहिले थसी न ल न ट्याङ्कर न इनासँग डु छेनासँग डु हजुर शुभ जयमा भा वेक रतनलाल श्रेष्ठ सूर्य बिना खोप पाखा वेक्ल सप्तको अहिले सोनी गलिक लिक गुइन एकु एक ल यागु मुहान त डो अन पाखेन ल हया जुसान टोङ्के माल ढका जाने ठो सोनी गुने फुक्क कठे यागु हाहाकार जुया चङ्गु डो छौकठ चाहिँ भा ठिकै जुया हाहाकार जुया चङ्गु डोले छौकठ सोनी गुने

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रेढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ नोर ब्लोन डाक्टर सोनी मुवागलेसे प्रभासी नेपाली दा रङ केबा ह्युला विकासरी लगानी लाबारी मोइजेन लासिउबा मुला अस्ट्रेलियाला नेपाली ब्योन छोङबोन कादेथेन काठी लामा ब्लोन वागलेसे तिरेमला नेपाली सोदे दोनाला नेपाली भिवा सरकार थेन पार्टीला ताम्री ढुक्का ताबारी मोइजेन लासिउबा मुला बिसी ब्लोन वागलेला निजी लोन खाङसे पाङबा मुला स्यान्दो ह्युल्डी चिबा नेपाली युल्ला सद्भाव धुत ताबासे राङला सारी खाम्दे रो लाबारी मोइजेन लासिउबान नोर ब्लोन वागलेसे युल्ला नोर विकासरी धातेला सरकार से बङ लाबान मुला बिसी सुङबा मुबा तिलमा ग्यासे डाइभर छ्याम भोटेकोसी घान्दिरी ताइबा इबी मोटर माइबारी बङ लाबादा दिम्ब्लोन सुदन खुरुङ घटना ताबा घारी धो सिउबा मुला रसुवा जोङला सिडिओ नरेन्द्र परियार से सुङबा अनुसार गोर चुई ड्रोनला छ्याम गोर सोमनोन सुरक्षा निकायला कर्मचारी थिएन गोता खोर से कालिका गाउँपालिका सोम तल्लो धारो पानीला निचुई नि दिङला सबिन तामाङदा माइबान मुला दुर्घटना ताबा ग्ला खोज थेन धमिलो क्युइसे लामा माइबा गेरी समस्या ताबा मुला बिसी जोङ विपद व्यवस्थापन समिति से पाङबा मुला पूर्वाधार विकास ब्लोन सुनिल लम्साल थेन ठिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से लाना नाम ताइसी नोङबा पुष्पलाल ग्यालाम थेन लामो साँखु जिरी सडक ग्यालाम च्यासिउबा मुला तिनी चरीकोट रिताबा काठुरी पूर्वाधार विकास ब्लोन सुनिल लम्साल से मुडे चरीकोट सडक ग्यालाम सोबारी छोङबोन कादेदा कापा धुइनोन जिन्बासे दारेम ठिम अनुसार कारबाही तिसी ग्यालाम सोबा गे छार ग्यालाम ग्याम गाछा बोर्बा बिसी सुङबा मुला ठिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से छोङबोन कादेसे रिबा अनुसार खरिद एन संशोधन लासी

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जा। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले प्रवासी नेपालीके मातृभूमिक विकासक हेतु लगानी करबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। अस्ट्रेलियाक नेपाली युवा उद्यमी सङ्ग काल्हि भेल वर्चुअल छलफलमे ओ एक बेरके लेल नेपाली, सदैवके लेल नेपाली कहिके नारा, सरकार आ पार्टीक धारणामे विश्वस्त रहबाक लेल आग्रह कयल मन्त्री वागलेक निजी सचिवालय जनौलक अछि। प्रवासी नेपाली देशक सद्भावना दूत भेलाक कारणे मातृभूमि प्रतिके अपन कर्तव्य निर्वाह करबाक लेल प्रोत्साहन करैत अर्थमन्त्री देशक आर्थिक विकासक लेल वर्तमान सरकार लागि पड़लाक कारणे एहिमे प्रवासमे रहनिहार सभक सङ्ग आ सहयोगक अपेक्षा कयल बतौलनि। बजट मार्फत अर्थतन्त्रक पुनरुत्थानक लेल कर, राजस्व सहित उद्योग मैत्री नीति कार्यान्वयन कयल गेलाक कारणे निश्चित भऽ कऽ लगानी करबाक लेल ओ आग्रह कयलनि। लगानीक प्रतिफल सेहो सहज रूपमे फिरता लऽ जा सकबाक अर्थमन्त्री स्पष्ट कयलनि। शनि दिन साँझ चालक सहित भोटे कोसीमे खसल विद्युतीय सवारी साधन आ एहिके चालकके खोजीमे परिचालन भेल सुरक्षाकर्मीके हौसला देबाक लेल गृह मंत्री सुदन गुरुंग घटनास्थल पहुँचला अछि। प्रमुख जिलाधिकारी नरेंद्र परियारक अनुसार स्थलगत निरीक्षण पश्चात 10 ड्रोन सहित 3 सुरक्षा निकाय कर्मचारी गोताखोरक संग चालक कालिका गौपालिका वार्ड नंबर 3 तल्ला धारापानीक 22 सबिन तामांग के खोजी में परिचालन भेल अछि। जिला विपद व्यवस्थापन समिति खो तथा उद्धारक समन्वय कऽ रहल अछि। दुर्घटना स्थल गंभीर आ नीचा खोच, धमगर पानि आ नदी किनारक विशाल चट्टान सँ खोजी तथा उद्धारमे चुनौती थपल समिति जनौलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायक मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज MBBS के प्रश्न पत्र सार्वजनिक कयल आरोप में किछु व्यक्ति पकड़ल गेल अछि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेलक निर्देशन में ओ सब आई भिनसर पकड़ल गेल। नेपाल प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB अभियुक्त सब के नियंत्रण में लक अनुसंधान प्रारंभ कलक अछि। एहि साउन 8 गते स्नातकोत्तर तहक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विषयक परीक्षा शुरू भेल किछु मिनट में सामाजिक संजाल मार्फत प्रश्न पत्र बाहर भेल छल। प्रश्न पत्र बाहर भेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालयक व्यवस्थापन संकाय डीन के कार्यालय सेहो साइबर ब्यूरो के अनुसंधान तथा कार्यवाहीक लेल पत्राचार कयने छल। आइए परीक्षा नियंत्रण महाशाखा एहि घटनाक छानबीन करबाक लेल प्राध्यापक डॉक्टर अच्युत गवालीक संयोजकत्वमे 3 समिति गठन कलक अछि। समितिक सदस्य में अनुगमन निदेशनालयक उप निर्देशक, सह प्राध्यापक पुष्कर रखैला आ केंद्रीय परीक्षा संचालक समितिक सदस्य सह प्राध्यापक महेश राज।

पार हेबाक बात बतौलन। मंत्री चौधरी सड़क पूर्वाधारक विकास मात्र देश समृद्ध नहीं बनवाक लेकर कृषि वन जल जमीन आ वातावरण संरक्षण संगे समग्र विकास में जोर दिल जबाक धारणा रखलन। बाल्यकाल से हरियो वन नेपाल को धन आ नेपाल कृषि प्रधान देश थी कहिक सुनत आयल कृषि आ वन क्षेत्र अपेक्षित प्राथमिकता नहीं पाओल उल्लेख करते ओ माटि के सुधार कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में संचालन करते प्राकृतिक स्रोत संरक्षण पर सरकार प्रतिबद्ध रहा बतौलन। प्रत्येक प्रदेश में एक एक टा प्राणी उद्यान स्थापना करवाक सरकारक योजना रहल जानकारी देते मंत्री चौधरी वही अनुसार मध्य प्रदेश में सेहो प्राणी उद्यान निर्माण कैल जेबाक बात बतौलन। ओ संघ आ प्रदेश सरकार एक राज्य संरचनाक अंग भेला कारणे आपसी समन्वय आ सहकार से आगू बढ़ाओल जेबाक बात पर जोर दैत मध्य प्रदेश में कृषि वन आ वातावरण संरक्षण के लेल सब पक्ष मिलकर काज कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक वन तथा वातावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी वन जंगल संरक्षण बिना मानव जीवन संकट में रहबाक उल्लेख करैत संरक्षण अभियान में सब गोटे के सहभागी होबाक लेल आग्रह कलन। वही अवसर पर मंत्री गीता चौधरी सब डिवीजन वन कार्यालय परिसर में कल्प वृक्ष तथा धनसाधाम वनस्पति उद्यान स्थित नक्षत्र वाटिका में राशि अनुसारक गाछ रोपिकर वृक्षारोपण कार्यक्रमक शुभारम्भ कयने छलथि। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबंध में सरकारी वार्ता टोली छलफल शुरू कलक है। डॉक्टर केसी के सहयोगी डॉक्टर अमृत जोशी के अनुसार केसी के प्रतिनिधि आ सरकारी टोली बीच स्थिति प्रादेशिक अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हेमराज पांडे के कार्यकक्ष में वार्ता भेल। वार्ता में सरकारक दिशा प्रधानमंत्रीक स्वास्थ्य सलाहकार जेपी अग्रवाल प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालयक सचिव चूड़ामणि पौड़ेल आ स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालयक सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा सहभागी छलथि। डॉक्टर केसी के दिशा हुनक सहयोगी डॉक्टर अमृत जैसी आ पवन थापा सहभागी छलथि। सरकार के सौन पांच गत धरि मांग संबोधन करबाक लेल समय देल गेल भेलाक बावजूदो एहि के व्यवस्था कयल गेल उल्लेख करैत केसी सौन सात गत्ते सँ अनशन शुरू कयलनि। ओ गेटा विश्वविद्यालय अस्पताल के पूर्ण क्षमता में संचालन का कमती में 300 शैया के सेवा संचालन तत्काल शुरू कैल जबाक आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन का MBBS सहितक शैक्षिक कार्यक्रम संचालन कैल जबाक मांग रखलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जल संपदा के राष्ट्रीय समृद्धिक आधार बनेबाक लेल आग्रह कलन अछि। आई काठमांडू में आयोजित नेपालक जल स्रोत क्षेत्र में विकासक ढांचा संभावना तथा जलवायु परिवर्तन से सृजना कैल चुनौती में केन्द्रित जल स्रोत विज्ञ महाजन यादव द्वारा लिखित पुस्तक नेपाल को जल स्रोत सार्वजनिक कार्यक्रम में पुस्तक लोकार्पण करते नेपाल अन्य देश के तुलना में जल सम्पन्न देश भेलाक बावजूदो ओकर वैज्ञानिक योजनाबद्ध आ राष्ट्रीय हित अनुकूल उपयोग नहीं भ सकल अध्यक्ष यादव के कथन छल। जल स्रोत के केवल ऊर्जा उत्पादन से मात्र सीमित नहराय कृषि पेयजल सिंचाई उद्योग वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक रूपांतरण संग जोड़ कर दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीति निर्माण कैल जेबाक बात पर ओ जोर दलन। जल स्रोत विज्ञ तथा राजनीतिक समेत रहल लेखक यादव पुस्तक तैयार कैल गेल उद्देश्य नेपाल में जल स्रोत संबंधी नीतिगत बहस के थप तथ्यपरक बनायब आ नीति निर्माता अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी तथा सरोकार वालक लेल उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध करायब रहल बतौलन। यादव के अनुसार पुस्तक नेपालक जल स्रोत विकासक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भविष्यक अवसर आ चुनौती धरिक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करैत जलवायु परिवर्तन के युग में अपनाओल जाय वाला नीतिगत तथा व्यावहारिक उपाय सबके सेहो समेटलक अछि। नवीकरण नहीं भ सकला पर देशभरिक 2000 एम्बुलेंस ओहिना पड़ल अछि। स्वास्थ्य 2076 स्वास्थ्य संस्था अतिरिक्त एम्बुलेंस के संचालन करबा में रोक लगौलाक बाद नवीकरण नहीं भकर ई एम्बुलेंस ओहिना थनकल अछि। संयुक्त एम्बुलेंस चालक संघ नेपाल ट्रेड यूनियन संघक अध्यक्ष नवराज लामी छाने के अनुसार स्वास्थ्य संस्था अतिरिक्त संचालन कैल एम्बुलेंस नवीकरण नहीं भेल अछि। ई संख्या और थप 1005 से रहल ओ जानकारी दलन। देशभर में 6000 हाराहारी में एम्बुलेंस रहल तथ्यांक अछि। एहि मध्य स्वास्थ्य संघ संस्था संचालन कैल एम्बुलेंस नवीकरण भेल आ गैर सरकारी संस्था निजी क्षेत्र संचालन कैल एम्बुलेंस संचालन नहीं भ चुकल अछि।
ऐन आयल इम्हर निरंतर रूप में संशोधन के लिए सरकारी तवर पर पहल करवा काज भ रहा अध्यक्ष लामी छाने जानकारी दिलन। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधा शर्मा के ऐ समस्या संबंध में अवगत कराओल अध्यक्ष लामी छाने बतौलन। नया सरकार गठन भेलाक बाद स्वास्थ्य मंत्री संग अपन समस्या रखबाक तैयारी में रहल हुनक कथन अछि। ऐन संशोधन नहीं भेला पर बहुतो एम्बुलेंस ओहिना रहबाक आम नागरिक सहज रूप में सेवा पायब कठिन रहल ओ बतौलन।

एहिसँ चालक के रोजगारी सेहो गुमल ओ कहलनि। बाल साहित्य संबंधित 7 पुस्तक एकै संग सार्वजनिक कयल गेल अछि। हामिद आजुभाई ब्रिटिश काउंसिल आ बाल वाङ्मय तथा अनुसंधान केन्द्र द्वारा आई काठमांडू में संयुक्त रूप में आयोजन कयल गेल कार्यक्रम में शिक्षाविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति प्राध्यापक केदार भक्त माथेमा सहित बाल कथा संग्रह सार्वजनिक कयलनि अछि। ओहि अवसर पर शांति सापकोटाक मितिनी संजोग ठाकुरीक मम्मी घर हंसावती कुर्मिक इंद्रेनी सुशीला तमांग के आयती को बीहे अस्मिता बादी के हैतमा को हिम्मत बीना थिंग के नामक कथा आ संगीता उड़ाओ के सूर्जी को जालो मिलाकर 7 कथा संग्रह सार्वजनिक कयल गेल छल। देशक प्रमुख भंसार नाका बीरगंज भंसारकालय आर्थिक वर्ष 2082-83 में जीप कार वैन मोटरसाइकिल बस ट्रक लहरी सहितक विभिन्न सवारी साधन के आयात सँ 22.25 अरब टका से अधिक राजस्व संकलन कयलक अछि। बीरगंज भंसार कार्यालय आर्थिक वर्ष 2082-83 में 30 अरब 21 करोड़ टका से अधिक विभिन्न सवारी साधन के खरीद में 22.25 अरब टका राजस्व संकलन कयल भंसारक तथ्यांक देखौलक अछि। एक वर्ष के अवधि में बीरगंज नाका से 8.43 अरब टका बराबर के 56,555 थान मोटरसाइकिल के आयात से 7.77 अरब टका राजस्व वसूली कयल जनौलक अछि। आब सुन चांदी समाचार। स्थानीय बाजार में आई सुन चांदी के मूल्य किछु बढ़ल अछि। बीतल शुक्र दिन के तुलना में सुन के तोला में 1,600 आ चांदी के 60 टका से बढ़ल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघक अनुसार आई 1 तोला छापावाल सुन के मूल्य 2,87,100 टका आ ओतबे परिणामक चांदी के भाव 4,410 टका निर्धारण भेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कर्णाली प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए परसों शाम 5 बजे तक दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख का आह्वान। कैलाली के धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर गोविंद केसी और सरकारी वार्ता दल के बीच बातचीत का दौर हुआ शुरू। नेपाल भारत सीमा पर संभावित अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए सशस्त्र प्रहरी बल का सीमा संवाद समूह है तैनात। और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग फैलने से फ्रांस में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी ने नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रदेश सभा सदस्यों से दावा पेश करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री यामलाल कड़ेल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रदेश प्रमुख ने संविधान के अनुच्छेद 168 की उपधारा 2 के तहत 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बहुमत जुटाने में सक्षम सदस्य 12 श्रावण शाम 5 बजे तक दावा पेश कर सकेंगे। 40 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार गठन के लिए 21 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इस बीच कर्णाली प्रदेश सभा की अगली बैठक 14 श्रावण को दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। कैलाली के धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर गोविंद केसी की मांगों को लेकर सरकारी वार्ता दल और उनके प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा और शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव चूड़ामणि पौडेल वार्ता में शामिल हैं। डॉक्टर केसी का उपचार सेती प्रादेशिक अस्पताल में चल रहा है, जहां उनके प्रतिनिधियों से पहले चरण की बातचीत हो रही है। डॉक्टर केसी पिछले गुरुवार से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में गेटा शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा आयोग में नियम विरुद्ध नियुक्तियां रद्द करना तथा चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विवादित प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल और कानून न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री सुविता गौतम ने वर्षा से क्षतिग्रस्त पुष्पलाल राजमार्ग और लामोसांगो जीरी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया है। दोलखा दौरे के दौरान दोनों मंत्रियों ने मोडे चरिकोट सड़क, खिमती क्षेत्र, कालीदह भूस्खलन, तामाकोशी पुल और अन्य प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया। मंत्री लम्साल ने कहा कि मुडे चरिकोट सड़क उन्नयन के लिए निर्माण कंपनी को दिया गया अतिरिक्त समय भी समाप्त हो चुका है और अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गौतम ने कहा कि निर्माण व्यवसायियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक खरीद कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन काम में लापरवाही जारी रहने पर कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार वर्षा के बाद हुए भूस्खलन से नागमा गमगढ़ी सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। मुगु जिले के छायानाथ रारा नगरपालिका 8 स्थित झारी खोला में कल सुबह आए बड़े भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई, जिससे यात्रियों और वाहनों को बीच रास्ते में रुकना पड़ा है। सड़क डिवीजन कार्यालय के अनुसार मलबा काफी बड़ा और मार्ग पूरी तरह खुलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों और जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क खोलने का काम जारी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के MBBS प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के मामलों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि नेपाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मंत्री पोखरियाल ने कहा कि सुशासन विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा और विस्तृत जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि 8 सावन को आयोजित MBBS प्रथम सेमेस्टर की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विषय की परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने वन पर्यावरण कृषि, जल, जंगल और भूमि संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। धनुषा जिले की धनुषाधाम नगर पालिका स्थित सब डिवीजन वन कार्यालय में आयोजित विचार विमर्श एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वन और पर्यावरण के संरक्षण के बिना मानव अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। नेपाल भारत सीमा सहजीकरण तथा सीमा क्षेत्रों में संभावित अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सूचना संकलन के उद्देश्य से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ने सीमा संवाद समूह तैनात की है। झापा के काकड़भिट्टा, मोरंग के रानी, परसा के वीरगंज, रूपनदेही के डंडा

0: टीम की औपचारिक शुरुआत की। आज ही अन्य सीमाना को पर भी संबंधित वाहिनी के वाहिनी पतियों ने टीमों की तैनाती का शुभारंभ किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जंगल की आग लगातार फैल रही है। अब तक 2,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बोर्डो शहर के आसपास के 50,000 अतिरिक्त लोगों को भी इलाका खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। इसके चलते बोर्डो से स्पेन की सीमा को जोड़ने वाला A63 राजमार्ग आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है और बोर्डो के दक्षिण में रेल सेवाएं भी रोक दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार आग अब तक लगभग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है। गृहमंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने में अभी काफी समय लग सकता है। भारतीय राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। बाढ़ से 6,54,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और 10 जिलों के 810 गांव अब भी जलमग्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रभावित लोगों के लिए 274 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 19,000 लोग ठहरे हुए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करनाली प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए परसों शाम 5 बजे तक दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख का आह्वान। कैलाली की धनगढ़ी में आमरण अनशन पर बैठे डॉ. गोविंद केसी और सरकारी वार्ता दल के बीच बातचीत का दौर हुआ है शुरू। नेपाल भारत सीमा पर संभावित अवैध गतिविधियों को रोक के लिए सशस्त्र प्रहरी बल का सीमा संवाद समूह है तैनात और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग फैलने से फ्रांस में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: फोर जी मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
2: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट सिलसिला
2: सिलसिला।
3: रेडियो पत्रिका सिलसिलामा प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित साथी मनुका कुमार अनि म हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। रेडियो पत्रिका सिलसिला हरेक आइतबार बिहान 11 बजेको समाचार पछि र यसका साथै आइतबारै राति 10 बजेको हिन्दी भाषाको समाचार पछि पुनः प्रसारणमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेगमेन्टहरू रेडियो पत्रिका सिलसिलामा हुनेछन्। अझ भनौ, खोजमूलक सामग्रीको आधारमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेका हुन्छौँ।
2: कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जनका लागि गीत, विज्ञान उपयोगी सामग्री, स्वास्थ्य चर्चा, सामान्य ज्ञानका जानकारी, प्रेरक एवं रोचक प्रसङ्ग लिएर आउने गर्दछौ। कार्यक्रममा समावेश हुने सामग्री विभिन्न संचार माध्यम, अनलाइन समाचार एजेन्सी र न्यू मिडियाबाट साभार स्रोत हुनेछन्।
3: त्यसैले यो कार्यक्रमलाई पूरा समय सुन्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौ।
2: रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको संगालो, यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालमा